बीमा को लाभ दी आपको कमाई को लाभ लेने मौका आज बनो सानीमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस को बीमा अभिकर्ता सानीमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस खुले रजियों।

सयों रेडियो, हजारों रेडियो कर्मी र करोड़ों नेपालीको माझमा यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIM।

जनहित का लागि नेपाल सरकार महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय को सहयोग रेडियो दिदी बहिनी 95.2 मेगाहर्ज को सहकार्यमा कुष्मा नगरपालिका पर्वत

0: बीमा को लाभ दी आपको कमाई को लाभ लेने मौका आज बनो सानिमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस को बीमा अभिकर्ता सानिमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस खुले रजियों
1: इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट विशेषज्ञ डाक्टर राजन मणि भंडारी चरक मेमोरियल हॉस्पिटल नागढुंगा पोखरा में
2: इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट विशेषज्ञ डाक्टर राजन मणि भंडारी आईतवार देखि शुक्रवार सम्म साझा पांच बजे पछि अथवा आवश्यकता अनुसार एस चरक मेमोरियल हॉस्पिटल नागढुंगा पोखरा में आउनु हुने भएकोले समयमै आफ्नो स्वास्थ्य परीक्षण गरी स्वास्थ्य लाभ गर्नुहोला
1: उपचार सेवाहरू
2: भेरिकोस भेनको लेजर उपचार खुट्टाका सुन्निएका तथा फुलेका नसा लेजर प्रविधि बिना ठूलो चिरफार उपचार गर्ने विधि
1: अल्ट्रासाउन्ड तथा सिटी गाइडेड बायोप्सी प्रक्रिया मासुको टिस्यू नमुना लिएर रोग जस्तै ट्युमर पत्ता लगाउने प्रक्रिया
2: रक्तनली सम्बन्धी
3: यो रेडियो दिदी बहिनीको समय सूचक हो
4: अहिले बिहानको ठिक 10 बज्यो

बीमा को लाभ दी आपको कमाई को लाभ लेने मौका आज बनो सानीमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस को बीमा अधिकर्ता सानीमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस खुले रजियों।

0: रेडियो रेडियो दीदी बहनी को समय सूचक हो।
1: अहिले साँझको ठीक छ बज्यो।

0: को लाभ दी आफ्नो कमाईको लाभ लिने मौका आज बनौ सानीमा रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्सको बीमा अधिकर्ता सानीमा रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स खुलेर जिउ
1: इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट विशेषज्ञ डॉक्टर राजन मणि भंडारी चरक मेमोरियल हॉस्पिटल नागढुंगा पोखरा में
2: इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट विशेषज्ञ डॉक्टर राजन मणि भंडारी आइतबार देखि शुक्रवार सम्म साझा पांच बजे पछि अथवा आवश्यकता अनुसार एस चरक मेमोरियल हॉस्पिटल नागढुंगा पोखरा में आउनु हुने भएकोले समयमै आफ्नो स्वास्थ्य परीक्षण गरी स्वास्थ्य लाभ गर्नुहोला।
1: उपचार सेवाहरू
2: भेरिकोस भेनको लेजर उपचार खुट्टाका सुन्निएका तथा फुलेका नसा लेजर प्रविधि बिना ठूलो चिरफार उपचार करने विधि
1: अल्ट्रासाउंड तथा सिटी गाइडेड बायोप्सी प्रक्रिया मासु को टिश्यू नमूना लिएर रोग जस्ते ट्यूमर पत्ता लगाउने प्रक्रिया
2: रक्तनाली संबंधी रोगहरूको उपचार एंजियोप्लास्टी स्टन्ट राख्ने प्रक्रिया इम्बोलाइजेशन
1: कैंसर उपचार ट्यूमर एब्लेशन तथा विशेष थेरापी सानो चिरफार मिनिमल इन्वेसिव विधि ट्यूमर नष्ट करने उपचार
2: शरीर में जमा भएको पस वा असामान्य तरल पदार्थ निकाल्ने प्रक्रिया
1: पाठीघरको मासु युटेरिनल फाइब्राइड एम्बोलाइजेशन पाठीघरमा भएका फाइब्राइड मासुका गाँठालाई शल्यक्रिया नगरी उपचार गर्ने विधि आदि
2: थप जानकारीका लागि चरक मेमोरियल हस्पिटल नागढुङ्गा पोखरा फोन 061582578529582778